0: Yeah, A team. Take a look at the special report.
1: Celebrations erupted at the Suryavanshi home in Samastipur as the national selectors took a bold leap of faith by picking the Bihar teenager for the T20 tours of England and Ireland, as well as the Asian Games, following a series of extraordinary knocks in the Indian Premier League.
2: हम लोग के लिए सपना सच होने के बराबर है. बचपन से वैभव जो मेहनत किया, बहुत कठिन परिश्रम किया, जी तोड़ मेहनत किया था इसी चीज के लिए कि एक दिन देश के लिए खेलेगा. कल रात में बात हुआ था तो वैभव बोला था कल पापा 1 बजे सिलेक्शन कमिटी बैठे थे, उसका वो थोड़ा सा जो है कलेजा धकधका रहा था. तो हम बोले नहीं, अच्छा खेला है. हाँ, अच्छा खेला है तो अच्छा होगा.
3: इतना खुशी कभी नहीं था जितना खुशी आज है. दूसरी बात है, मुझे क्या, पूरा देशवासी को भी खुशी है.
4: इससे ज्यादा खुशी और प्रशंसा की क्या बात होगी. आज देख रहे हैं हमारे घर पर कितना भीड़, फटाके छूटे, मिठाई बांटी जा रही है. और T20 इंडिया टीम में आज वैभव का सबसे सिलेक्शन हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत ही प्रशंसा और पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है.
1: His performances for the Rajasthan Royals have earned him a place in India's senior squad for the first time. Earlier this year, he was instrumental in India's under-19 team winning the 50-over World Cup, scoring a remarkable 175 against England in the finals.
5: We've seen what he can do. You saw even towards those playoffs, almost single-handedly carried Rajasthan Royal for a young kid. We've got high hopes of him, and I think he just has picked himself really.
1: Suryavanshi is now in line for his international debut in Belfast, where India will take on Ireland in 2 T20 internationals at the Stormont on June 26 and 28. If he plays on the tour, Suryavanshi will become India's youngest male international debutant, surpassing Sachin Tendulkar, who made his international debut at the age of 16 years and 205 days in a test match against Pakistan back in 1989. Already comparisons are being drawn with both Sachin Tendulkar and Don Bradman. His remarkable performances led the 15-year opener to win the Most Valuable Player award after amassing 776 runs at a staggering strike rate of 237.30.
2: ये लोग ब्रेडमैन से, तेंदुलकर से या सहवाग से, युवराज से तुलना करते हैं, लेकिन हम अभी इस लाइक वैभव को इस लाइक बिल्कुल नहीं समझते. देखिए, वो लोग देश के लिए बहुत कुछ करके गए. सब कोई क्रिकेट के भगवान है, कोई दीवार है. मतलब कहने का ये है कि वैभव अभी उन लोगों के पैर के धूली के बराबर भी नहीं है.
1: For now, the teenager will have to switch back to 50-over cricket as he tours the Emerald Isle with India A team. Although he has earned his opportunity through his exploits in T20 cricket, his ultimate dream remains representing India in all three formats of the game. With Rika Roy, Bureau Report for NDTV.
0: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Navneeti Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time.
5: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि criminal mindset है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, they are chameleon people.
6: A brother

0: और स्थिति खराब होगी। सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर के इसके उपाय तलाशने चाहिए, उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है।
1: मैं कल भी पत्रकार साथियों को कहा था, अभी तो और भी बुरे दिन आने वाले हैं। इब्तदा इस घर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो मोदी भक्ति ने और इलेक्शन कमीशन ने देश को तबाह करने का ठेका ले रखा है, लोकतंत्र के आस्था में रास्ता रखने वाले लोगों से अपील है, इस देश को बचाएं और लोकतंत्र को बचाएं।
2: The crude oil price was less, the government didn't pass on the benefit to the common people. Now when the international price has been increased, that has been passed on to the people. So this government has been very anti-people. It's not looking in the interest of the people. So it's only looking at its coffers. So it has been very anti-people.
3: देखिए वो वैश्विक है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति है पूरे, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, यह हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है और अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है।
4: Switching tracks now to very tragic news coming out of the United States, where a shocking shooting has claimed the life of an Indian national from Telangana. All of 28 years old, Anshul Kuncha, who worked part-time as a pizza delivery agent in Philadelphia, was shot dead while delivering what is believed to have been a fake order. The victim received a delivery request to a deserted location on Saturday night. The police say that an unidentified gunman opened fire, shooting him multiple times before fleeing. His family says that nothing was stolen, raising questions about the motive. Now, reports are also suggesting that two masked men with backpacks were seen near the scene around the time of the attack.
5: We found out today that he was shot on his head 3 times yesterday, and he was dead. He was left on the road. It was a trap. Just for the sake of killing him, and I don't know what they gained out of it or what intention that they had. Mannani, please go to Champisarandi. This is a message to all the parents that want to send their kids to the US. Just give us our brother back. That's all I want. And I do want justice if it is possible.
4: Heartbreaking to hear the family, the sister of Anshul there speaking on the matter. And of course, all of 28 years old, a young life that's been cut short. With that, it's a wrap on this edition. News and updates will continue on the other side.

0: issues through a letter. Now, this has been sent to Kharge GACC president. We have marked that to other constituents of the India bloc, you know, parties. Now, this, since there has been reported in the papers, I can respond that we want a very broad arrangement of political parties to fight BJP. And it is also true that parties belonging to the India bloc, they may have to fight each other in states where, due to the objective situation prevailing in those states, we may have to take a different position. But then there's certain decorum need to be maintained when we fight each other.
1: देखिए, इंडिया जोट के माध्यम से टीएमसी पार्टी अपना भविष्य ढूंढने का प्रयास कर रही है और उनका भविष्य कुछ भी नहीं है, समाप्त हो चुकी है वो पार्टी, क्योंकि ये बंगाल का इतिहास रहा है। जो भी पार्टी सत्ता से गई है उनका वापसी कभी हुआ नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस, 1977 में सत्ता से जाने के बाद में कभी वापस आई नहीं। उनके लिए एमएलए एमपी जीतना कितना कठिन था। 2011 में बामफ्रंट की सरकार चले जाने के बाद में 21 में एक भी सीट नहीं जीत पाए। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखिए, वामपंथी एवं कांग्रेस का तो कुछ आइडियोलॉजी, कुछ सिद्धांत है। और कई एक राज्य में, जैसे कि कांग्रेस एक दो राज्य में शासन करती है, वामपंथी का कुछ सिद्धांत है, उस पर आधारित होकर के ये पार्टियां चलती है। लेकिन टीएमसी पार्टी के पास में ना कोई आइडियोलॉजी है, ना सिद्धांत है, ना कोई इनका कोई विजन।
2: वेयर इज इंडिया अलायंस? द सीपीएम पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बीबी has already written a letter to Congress. Congress has been alleging that CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
3: Time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue.

0: Of India. Now people want to watch films which are about India, which are about Indians, Indians who so far would have been unsung, would have been unspoken of, but now there is a greater appetite of that. And we've seen a whole slew of such films being made and watched and loved over the last several years. And one more now is set for release. Governor, we are talking about the film Governor and the person who is going to feature in and as the governor, former RBI governor in 1990s. Manoj Bajpayee joins us today in our NDTV studios. Thank you very much.
1: Thank you. Thank you.
0: Manoj ji, aapko, first of all, बहुत धन्यवाद कि आप इतने रिग्रेसली हो आपका प्रमोशन होता है यू हैव मेड टाइम फॉर अस बट आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ बायोपिक्स आर मेड ऑन हेरोइक फिगर्स शिवाजी पे बनता है आपका औरंगजेब पे भी बनता है अकबर पे बनता है अकबर द ग्रेट व्हाई मेक अ फिल्म अबाउट अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर
1: वेल देयर इज एन आंसर लाइज देयर इन योर क्वेश्चन That we made films on army heroes, social activists, teachers. We made films on each and everyone possible who contributed to the growth of the nation. But somewhere, economics is a subject that everybody thought that you know it's hard to comprehend for the common audience, and they always run away from it. But there is a. There is something very, very new, and that becomes also a primary reason for me to say yes to the film, to agree to do the film. Not only it's talking about RBI governor, but it is primarily a thriller set in 1990, in the time of political instability, in the time of extreme economic instability. And there lies the reason for making this film. How one man, a quiet, very reserved man, comes into the picture, recommended obviously by Mr. Gandhi to the government, and he skipped the line. He skipped the line of many of the officers or bureaucrats who were touted to become RBI governor, and he was flown into straight away to this position. So there were many naysayers, there were many critiques. It's like usual trope, right?
0: You would be set up for defeat. You would be set up for failure.
1: So you set up for defeat. He starts as an underdog, and how his one decision and how he changed the whole course of future of this country. Today, where you are sitting, with so many cameras here, there is somebody who started all of this. I mean, he was one
0: wearing imported clothes.
1: Yeah, wearing not imported. I wouldn't say that you know S. Venkatramanan was wearing imported clothes.
0: No, I'm saying the fact that he brought in liberalization. Yeah, he was instrumental in that.
1: He was instrumental.
0: That is why we have the kind of economy we have.
1: He was one of the heads in those times. But since everyone showed a lot of trust in this one person. And with so much confidence, he was gotten into it to salvage the country from this situation. And the time was very limited. So it's a thriller running against time. So what I was trying to get at is a usual mainstream trope. But the backdrop is RBI. But the backdrop is economics. I can say it with a lot of confidence. That in this very building of yours, 90% of the people who work here were very bad in mathematics in schools, including me, who's
0: including
1: sitting here.
0: Me.
1: Okay. So how to make it interesting? How to make it exciting? And how to make it engaging?
0: Politics as it is, लोग थोड़ा सा डरते हैं फिल्म इंगेज करने में और ऊपर से आप इकोनॉमिक्स भी ले आइए
1: इकोनॉमिक्स है
0: और फिर उसको थ्रिलर बनाइए
1: सो आई वुड से दैट्स अ विक्ट्री ऑफ राइटिंग व्हेन इट कम्स टू गवर्नर
0: मेरे को ये बताइए बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट अ टाइम जहां पर कांग्रेस की सरकार थी राजीव गांधी जी चंद्रशेखर जी की सरकार थी लेट्स से नॉन बीजेपी सरकार थी क्योंकि अब जो पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं लार्जली वो ये कहा जाता है कि भाई आप एक ही तरीके की थॉट का एक ही तरीके की आइडियोलॉजी का महिमा मंडन करते हैं सो टू पिक अ फिल्म फ्रॉम बिफोर 2014 हाउ डू यू नेविगेट दोज लैंड माइंस कि भाई हम एक देश की कहानी बता रहे हैं किसी एक पोलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पोलिटिकल पार्टी की हम लाइन टो नहीं कर रहे हैं.
1: बट आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन गेटिंग मिस्टर एस वेंकटरमणन टू दैट पोजिशन एवरी वन वॉज रिस्पॉन्सिबल. ऑन वन हैंड ही वॉज रिकमेंडेड बाय मिस्टर गांधी and also there was an approval from Dr. Manmohan Singh, but also the BJP opposition who was in alliance, the finance minister was Yashwant Singh, Chandrasekhar ji was the prime minister, so there was an approval and agreement from each and every party. They had to come together. There was no other option left. Either you come out of it or you declare this nation bankrupt. So this was a crisis time. We are talking about why this is important for the Gen Z or the generation next, that this country, you know, was not always supplied with Coke and Pepsi. Or this country was not holding mobile phones. There was one person before malls came in you know, who was responsible, whose one decision was responsible, where the entire nation came together and took this decision that the challenges were the naysayers within the department. Everyone thought that, you know, he's the scapegoat for the political regime, and everyone was waiting for him to fail. And there was this man and his conviction, man with very few words, with loads of action, loads of ideas, and how when he implemented it, and he became and the nation became successful in executing it, that becomes the reason for Manmohan Singh and P.V. Narasimha Rao Sarkar, you know, to come up with liberalization and how the open market economy, everything started, you know, unfolding. So I'm not interested in that as an actor. What I'm interested in, a protagonist coming into a challenging time, and with his effort and ideas, we somehow accomplish something impossible without letting anyone know about it, without letting even the media know about it.
0: You engage with politics. आपके बिहार चुनाव के दौरान भी आपका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि आप एंडोर्स कर रहे हैं आरजेडी को.
1: देखिए, ये तो आपके लोगों ने बताया होगा आपको. मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा था.
0: नहीं, ऐसा वीडियो बनाया गया था कि भाई मनोज जी एंडोर्स.
1: हां, ऐसा वीडियो तो कभी भी बना सकते हैं. मैं आपको
0: जैसे आपने एक और पहले दिया था, स्टेटमेंट दिया था जो इनटॉलरेंस की पूरी बात हो रही थी, उसमें आपने एंगेज किया था कि भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना खास इनटॉलरेंस देश में हो रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को,
1: किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना मैं बिलोंग करता हूँ, ना मैं कोई मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं. मैं पागल हूं अपने अभिनय के पीछे. और जहां तक बात है पढ़ने लिखने की, तो जाहिर सी बात है मैं अज्ञानी तो नहीं रहना चाहता हूं. मैं उन लोगों की तरह से नहीं होना चाहता हूं कि जो ट्विटर पर जाकर के लोगों को गाली देते हैं बिना किसी ज्ञान के. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अपने काम में लगाना चाहता हूँ. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई उस फिल्म में लगाना चाहता हूँ जो फिल्म मैं कर रहा हूँ. अगर मैं पढ़ूँगा लिखूँगा नहीं तो मैं गवर्नर कैसे कर पाऊँगा. तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को एजुकेट करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉलेज गैदर करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं मुझसे यंग जनरेशन भी आके बात करता है. सो व्हेन द यंग जनरेशन इज कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, आई कांट बी टॉकिंग टू देम इन एयर. माय कन्वर्सेशन विद देम विल बी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई गैदर्ड, राइट. सो as a responsible citizen of this country, we try to educate ourselves or enlighten ourselves.
0: kya poochte hain aapse young generation, kyunki aajkal gen z ki bahut baat hoti hai, kya poochta hai gen z aapse?
1: dekhiye, gen z ke paas pe kya hota hai, jo usually I'm always wondering, they want to spend some time with me, and I keep telling them that, you know, spending time with me, I will say few words that may click with you or inspire you. But at the core of it, you will have to work very hard. But somewhere they are coming to me expecting that कि मैं एक कोई acting की पुड़िया दे दूँगा. पुड़िया तो ऐसी कोई नहीं होती. पद्मजा जो है कई सालों से इस न्यूज़ रूम में बैठ रही हैं, तब जा करके उनको ज्ञान हुआ। लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार आप न्यूज़ रूम में आके बैठी होंगी तो इन कैमराज ने और इस माइक ने आपको बहुत डराया होगा, आपके पीछे जो ये सारा चल रहा है इसने बहुत डराया होगा, इन लाइट्स से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, पीछे लोग हल्का सा भी मूव करते होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता होगा। इस ओवर द ईयर्स यू गेन्ड नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन, you gain knowledge through your experience, you gain knowledge by reading about it, by reading various other people from the world, and that's how you are you ready yourself to impart the same experience and knowledge to the next generation, right? And this is what I do.
0: But aapko lagta hai ki Gen Z ke liye abhi desh ek ideal situation mein hai, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आपने जेनजी का जिक्र उठाया था।
1: आप जो है ना फंसवाने के चक्कर में आई आप तैयार वार होकर के आई हैं।
0: सब लोग जो है आपसे इतने सवाल पूछते हैं तो दो तीन सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन शुरू करने वाली है, जेनजी आपसे पूछेगा मनोज जी बताइए क्या करें अभी इस देश में, जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या आप देखें एक विकल्प कॉकरोच जनता पार्टी, क्या करेंगे मनोज?
1: अच्छा देखिए क्या है, पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले उनको ये बात बोलूँगा कि आप अपनी स्थिति में अपनी स्थिति को बेहतर जानते हैं, मनोज वाजपेयी नहीं जानता है। मनोज वाजपेयी इस समय 32 साल से इस फिल्म के निर्माण में लगा है, एक एक्सपीरियंस है। मैं आपकी स्थिति तक जानना चाहूँ तब भी नहीं जान पाऊँगा, लेकिन अगर आप स्थिति को लेकर सजग हैं, उसको लेकर के प्रताड़ित महसूस करते हैं तो जो भी संभव हो सके वो कीजिए। और आपको एम्पावर किया गया, देखिए आप अगर सोशल मीडिया से आप एम्पावर कर रहे हैं, मोबाइल हर हाथ में फ़ोन देना मतलब क्या है? एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। जब आप एम्पावर करते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन एट द कोर ऑफ इट इफ़ यू आस्क मी, एट द कोर ऑफ इट मैं हमेशा जो है एक ही बात कहता हूँ। मेरे बचपन में एक मास्टर साहब थे, उनका नाम था छेदी महतो। उनके क्लास में मैं जाता था, जो कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता था, तो मैं हम लोग अपने अपने बोरी बिछाते थे, बैठते थे उस झोपड़ी में, और मेरे बगल में एक रामचंद्र था जो सुबह घास काट करके अपनी गाय को खिला करके और फिर वो स्कूल आता था। हम दोनों की उम्र क्या थी? 6 साढ़े 6 साल 7 साल। और रामचंद्र टॉपर था। रामचंद्र के जीवन में छेदी महतो साहब का बहुत बड़ा योगदान था। रामचंद्र जो है वो ज़्यादा आगे कॉलेज के बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, रिसोर्सफुल नहीं था, तो उसने अपना ट्यूशन खोला और वो ट्यूशन सुपरहिट था बेतिया हमारे शहर में। हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए रामचंद्र जो है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था। रामचंद्र ने उनको पढ़ाना शुरू किया था, उनको सिखाना शुरू किया और कई सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई। तो मेरा ये कहना है जो यंग जनरेशन होता है ना, उसकी उम्मीद की एक ही किरण होती है, छेदी महतो। हर किसी का एक छेदी महतो होता है। मेरे लिए जो छेदी महतो थे, मेरे लिए जो गंगा सागर सर थे मेरे स्कूल के, तो जब नई ऊर्जा जब होती है हमको उनको बिठा करके उनको सुनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है या है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके आगे कुछ भी आप सवाल करेंगी तो मैं कहूँगा गवर्नर के आगे आउट ऑफ सिलेबस है सर।
0: एक नया जॉनर भी है, जैसे कि पिछले साल हमारे धुरंधर आई थी, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था ये कह के कि भाई ओवर द टॉप है एवरीथिंग, यू डू नॉट नीड टू यू नो बीट पीपल ऑन द हेड विद अ हैमर। हाउ डू यू कंपेयर दैट जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग विद व्हाट मे बी इज अ मोर क्वाइट नेशनलिज्म कह लीजिए या क्वाइट स्टोरी टेलिंग कह लीजिए, हाउ डू यू कंपेयर द टू? क्या दोनों के लिए एपेटाइट है देश में?
1: अब हमेशा से रही है। आप जब छोटी थी, जब बड़ी हो रही थी, अपने पेरेंट्स के साथ फिल्म देखने जाती थी, तब का समय भी याद कर लीजिए, बड़े बड़े बजट की फिल्में भी चलती थी और छोटे बजट की भी फिल्में चलती थी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि देर यूज टू बी अ टाइम वेन मिस्टर बच्चन केम ऑन द सीन एंड इट वॉज लाइक अ स्टॉप, ही वॉज हरिकन, मतलब नो स्टार कुड स्टैंड दैट स्टॉर्म, यही बड़ी मतलब आंधी की हवा में उड़ रहे थे सबके सब. बट एट द सेम टाइम देर वॉज दिस क्वाइट प्रोडक्शन हाउस विच वॉज बिल्डिंग अप बट मेकिंग स्मॉल एंड मिड रेंज फिल्म एंड देयर हीरो वॉज अमोल पालेकर. इवन दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल ऋषिकेश मुखर्जी. Only in the time of Mr. Amitabh Bachchan, there was this parallel movement happened where Mr. Shyam Benegal and so many others were making films and they were getting their audience to the theater. So every time will have its big budget, mid budget, and small budget.
0: But now they say it's Naya Bharat, no? Naya Bharat, जहाँ पे कुछ बड़ा होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को एकदम घुटनों पे ले आया टाइप की फिल्म.
1: नया भारत में एक एक एक हिंदुस्तान और भी रहता है जो जो युवा वर्ग है. एक एक नया भारत में वो सब वो मजदूर भी है. नया भारत में ऑटो रिक्शा वाला भी है. तो हम सबके लिए फिल्में बनाए तो बहुत अच्छी बात होगी. और इस नए भारत की जिसकी बात कर रही हैं आप, उसमें परिवार तो इस भारत से अलग नहीं है. वो परिवार जो ज़्यादातर जो वायलेंस वाली फिल्में या किसी और तरीके की फिल्में देख नहीं पाता है साथ में, गवर्नर उनके लिए है. और एक औरत अगर फिल्म देखने नहीं जाती है तो पूरा परिवार उस फिल्म को देखने से वंचित रहता है. और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से साथ कह रहा हूँ कि ये हर औरत फिल्म देखने जाएगी. ये हमारी कहानी वो एक सिर्फ ब्यूरोक्रेट की नहीं है, उसके परिवार की भी है. एक उसकी बेटी की है जो UPSC की परीक्षा देने वाली है, दे रही है. ये सारी उम्मीद की है, महत्वाकांक्षा की है, जो सब मिडिल क्लास या जो सैलरी वाले जो है अपने बच्चों के लिए देखते हैं. जी
0: आपने द अदर रीसेंट फिल्म दैट यू डिड व्हिच अगेन रैन इनटू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वाज घूसखोर पंडित. व्हेन यू लुक बैक एट इट डू यू थिंक इट वाज वॉरंटेड? बिकॉज ये मामला तो पूरा मतलब कोर्ट तक का गया. वहाँ पर लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए, कहा कि भाई आपको सिर्फ पंडित ही क्यों घूसखोर दिखते हैं. इन रेट्रोस्पेक्ट आपको लगता है कि इसको थोड़ा टेम्पर किया जा सकता था?
1: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फिल्म इज स्टिल नॉट रिलीज्ड. नेटफ्लिक्स इज द OTT. इट विल कम इन ऑगस्ट सम टाइम आई थिंक. सो व्हेन वी आर नेमिंग द फिल्म, आई एम नॉट डिसओनिंग द फिल्म एनी वे. I'm taking the complete responsibility of it. When we are naming the film, first of all, actors are not made part of it. A. But if OTT and my director have decided to go with a certain aspect of titling the film, I personally didn't see any problem there. But there is a last section which through social media. Express their reservations. For those people, we decided to change the title. When we went to the court, we were ready to change the title. And in one hearing, everything was taken care of. Now, naming a film is not a very big thing. But we have to be very, very conscious about one thing, that it should be with the essence of the film. When we are talking about Pandit or Ghuskhor, we are not talking about all the people. We are talking about this character. So in this film, what is this character called? And he's not Pandit, it's Pandat. It's Pandat. That he's very popular with that nickname that police department has given it to him. He's a Delhi police guy. Okay. Now, people have reservations. We changed it. We don't have any ego about it. No hesitation, nothing. We respected their reservation. And because at the end of the day, they are going to watch the film. But tell me, Padmaja, how is it right to send me death threats? How is it right to drag my family into the whole picture and say all kind of obscene words? What is my family's fault? My family has female members that you are talking about. I'm telling you, you as a woman, how far you think it is right to demean a woman who has no responsibility in naming the film? How far it is right that you are sending the death threat to me, who is part of it as an actor?
0: Death threat? Saying yes. What? For the name?
1: I mean, just for the name. So,
0: Who are these people?
1: I mean, see, there are bots, there are trolls everywhere, and whom to take seriously, whom not to take seriously, is very difficult to filter. So.
0: But why do people I was disappointed. Family? What does your family
1: I really
0: do?
1: Don't know. I was feeling bad for my family members who have nothing to do with my. They are talking about my 15-year-old daughter. They are talking about my wife. So for me, I don't let these people affect me. Mm. I felt pathetic. It's coming from the people, same people, who respected me for everything that I have done. If you are criticizing me in a nicer and gentler way, mm. I will bow down my head and change that about myself. Mm. And we've done it. But, you know, we are living in a time where there is an advantage of digital media, then there is a disadvantage too. Mm. I think we'll have to live with it.
0: क्या आप खुद को सेल्फ सेंसर करने लगे हैं क्या आप डू यू थिंक ट्वाइस बिफोर एक्सेप्टिंग अ प्रोजेक्ट डू यू एग्जामिन इट्स पॉलिटिक्स डू यू थिंक अच्छा इसका नाम क्या होगा लोग क्या सोचेंगे
1: टू से दैट इट्स नॉट अफेक्टेड इट्स अफेक्टेड नॉट ओनली मी द एंटायर इंडस्ट्री इट्स अ इट इज बिकम अ मेनेस टुडे इट्स अ मेनेस इफ इट इज अ गुड थिंग इट्स अ पॉजिटिव थिंग We are creative people, boss. We are not here, with guns in our hands. Mm. We are not here to offend our audience, not at all. Mm. Because audience is somebody that we want to show our film to. We don't want to show our film to an empty hall, mm. right? So we respect them. We always respected them. But today, the kind of scrutiny that is happening about everything that we own or that we have. Mm. Is disgraceful. Is if every citizen is important for this country, mm. do you think we are not? We are also part of the country. Mm. You know, if I'm an actor that you respect, my family is equally important, right? Mm. I can say it with all loudness and with all gentleness and politeness that I consider myself as one of the most responsible countryman who has been doing his job with utmost honesty and integrity. I think I deserve a little bit of respect from people.
0: 100%. So, when you are saying that you start to rethink or self-censor,
1: right?
0: In what way? I mean, what is your thought that you are राजनीति से दूर रहो
1: नहीं यार, मतलब ये, ना, पढ़ो ये लाइन अभी ये लाइन हटा दो यार इससे प्रॉब्लम हो सकती है
0: कैसी लाइन
1: है ना पता नहीं मतलब डिपेंड करता है क्या लाइनें हैं एग्जैक्टली तो मैं अभी कभी नहीं बता पाऊंगा ये लाइन यार नहीं नहीं नहीं यार ये मत करो सो गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स मतलब हमको जो है बहुत सारी चीज़ें देख करके चीज़ों को फिर आपके सामने लेके आना पड़ता है अब उस तरह का जो हम एक फ्रीडम महसूस करते थे हम नहीं करते हैं बिकॉज सडनली जो है पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहीं भी शुरू हो जाता है कुछ भी शुरू हो जाता है आउटरीच के नाम पे आप भद्दी भद्दी गालियाँ देते हो तो ये कहाँ तक जायज़ है मुझे नहीं पता मेरा अपना भारत मेरा अपना हिंदुस्तान मेरा अपना इंडिया जो है ना ऐसा तो नहीं है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ
0: वेल आई सर्टनली होप दैट फाइनली ऑल ऑफ दिस रियली बैड एक्सपीरियंस यू कैन Keep it behind. You can leave it behind with Governor.
1: Governor.
0: With Governor.
1: coming on 12th June.
0: Please.
1: And Padmaja is going to watch it with her family.
0: I will watch it. I will watch it for sure. And I will make sure that I come and give feedback. Because I think what gets lost in this entire noise of outrage, of anger, right. of short tempers, is some really good films. Like we said right at the beginning. Ek waqt tha jab hum jaake Switzerland mein filmein dekhte the. अब हम अपने देश में जो क्या हुआ है इतने सालों तक जो कहानियां बताई नहीं गई हैं उनकी फिल्में होपफुली देखेंगे और फॉर मेकिंग सच फिल्म्स मनोज वाजपेयी थैंक यू वेरी मच
1: थैंक यू बहुत मुझे थैंक यू वेरी मच
0: थैंक यू

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. I am Mayank Chaudhary and this is Limelight. In a dark crime comedy storyline, Bollywood superstar Madhuri Dixit is coming to Netflix. My friend Abira catches up with the cast of Maa Behen. Take a look.
1: Maa Behen, hum gaali nahi de rahe hain aaj. We are here to talk to the cast and, you know, for a 90s kid, everything feels very nostalgic in this film. The way they dress up, the name, everything, even the frames, it's so nostalgic. I'm a 90s kid and having Madhuri Dixit in front of me, it's always... And you are special because hum Bihar se hai aur aapke bagair hum Bihar Bihari nahi feel karte. Let's start with you. You know, to be in our world, how does it feel?
2: Oh, it was wonderful. I mean, we were in a amazing world created by Suresh and Pooja Tolani. And I'm so proud to be part of that world because we've created some crazy moments, some wonderful moments. This is like a, you know, most dysfunctional family you will ever find. And the mother is like a rule breaker. She is very strong-headed. She is someone who, you know, lives in a society where she's getting judged all the time. But she has these two kids and something happens in the house. There's a Khan lying right there. Have you seen that?
1: I am guessing you're blown away by the script.
2: Oh yes, I loved it. I loved my character. I loved all the characters in the movie. And I thought that it was a very well put together film. I mean, every character has conviction in the, and like you said, the bhasha.
1: Yeah.
2: It's very different, it's lyrical. You know, aise jhagda bhi karte to aise lagta hai ki pyar se baat kar rahe hain. Lekin hum log kaafi jhagda karte hain.
1: Tell me one thing. When you are surrounded by actors, professional actors, you have a director telling you, is it intimidating?
3: It was not. On this set because they all made me so comfortable at home. So, mujhe initially, like ma'am said, workshop se hi first day, main comfortable thi dono ke saath. It was never ki main yahan pe out of place feel kare ya kuch. And even with Suresh sir, the way he treated me day one se, everybody on set, ek hota hai na ki sab achhe log ek saath hain. Hamare jo DOP sir hain, Anuj sir, Pooja ma'am, Ravi sir, Tripti, एवरीबडी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सच में
1: कांड करने में मजा आया
3: और वो जो टाइटल है ना वो ये नहीं लग रहा है कि हम वो फील नहीं कर रहे हैं. वो फीलिंग है कि एक घर के अंदर ही है. एक्चुअल वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं. एक माँ है जो प्रोटेक्ट कर रही है मुझे ऑफ स्क्रीन भी. एक बहन है जो मुझे सिखा रही है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है. और उसके साथ सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझे हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में और इतनी पेशेंस और सपोर्ट के साथ. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी फर्स्ट टाइम एक सेट पे होना बट इतने अच्छे लोगों के साथ. तो मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ एक भी सेकंड. और मेरा इतने ड्रीम टीम
1: एब्सोल्युटली. बट यू नो यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू नो हाउ टू डील विद ट्रोल्स एंड कमेंट्स. बट अ लॉट ऑफ पीपल से दिस इज टू यू आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल से यू नो नाउडेज कंटेंट क्रिएटर्स आर जस्ट बिकमिंग एक्टर्स and the directors are taking them because of their followers. Is that true? And how do you deal with such comments when it comes to you? You know, ye influencers kyun ban rahe actors?
4: I think that's what she's been dealing a lot in the last few years. But I'll be very honest, it's very unfair. Meri film mein Madhuri Dixit hai. Mujhe nahi chahiye aise small talks. Tripti Dimri hai, Ravi Kishan hai. I don't need those. So purely has been cast for the part. As simple as that.
1: And how are you dealing with the trolls?
3: I am just ignoring them because unko jo bolna hai bole. Main to apna dream ji chuki hu. Ji rahi hu. Bhag
1: ye kaam. Ravi ji, you know, to be cast opposite Madhuri Dixit.
5: Oh God. पहले तो मुझे लगा था हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म हाउ आई विल
1: यू आल्सो थिंक लाइक दैट
5: या बिकॉज़ सी मैंने इनसे कभी मेरी रूबरू कभी मुलाकात नहीं हुई थी. माधुरी मैम को पर्दे पे देखे थे बाद में ऐसा कहीं टकराव नहीं हुआ था. और सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सीन्स जरा भी आसान सीन नहीं. इनके साथ मेरे बहुत ही ना मैंने वैसे कैरेक्टर कभी किए, ना मैंने माधुरी मैम को वैसे किरदार में कभी देखा. ऑल थैंक्स टू सुरेश त्रिवेणी जी की. और कुछ भी, माधुरी मैम को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है और उस दुनिया में रहती हैं कैसी खोई रहती हैं. इनकी आंखों में देखना बहुत दूर तक देखती हैं वो, पता नहीं कितने दूर जाती हैं. आई स्टिल कोई मतलब किधर तूफान हुआ, किधर आग लगी, मैंने बोला इधर ये हुआ. यू टेल हर एवरीथिंग यू नो. ये वो ऐसे हाँ या
1: It's
0: playful, it's flirty, it's exotic. Feathers have made a huge comeback in fashion, from Aishwarya Rai at Cannes to Beyonce at Met Gala, from runways to the red carpet. I catch up with the OG queen of feathers in Indian fashion, designer Pallavi Mohan.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
9: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
10: And that kind of victory is truly astonishing, and I do believe it marks a return of the Congress with the

0: officially, formally inviting volunteers towards that towards the Be the Leaders organization, where he had made where he mentioned about the former Chief Minister of Tamil Nadu, Kamaraj. He said in during 1960s, Kamaraj resigned from the Congress Party not because of he lost the election, but to strengthen the party on the grassroots level. He also mentioned that he is not comparing himself with the great Kamaraj, but he also had the same thought like Kamaraj. So he decided to step down from BJP. So he made the decision to resign from the BJP. But he also mentioned that he is so grateful for the BJP, for the platform which they offered. But he also mentioned certain things about inviting youths into the politics. So that's the pathway Annamalai has given for the youths in Tamil Nadu.
1: Thank you, Vijay, for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you for more on that story. That's the word coming in from Annamalai. And after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everyone's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India Gallop under his belt, his rise is nothing short of historic. Here is a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
2: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
3: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इंजॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इंजॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
2: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
3: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
2: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
3: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पर हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है अभी बहुत आगे जाना है गेम पे ध्यान देना है एकदम पांव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
2: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
3: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया सेफ हूँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
2: मेरे अपने
3: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूं क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से

0: से कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग, मतलब। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल। मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से वो लोग प्यार करते और सपोर्ट करते।
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है, ठीक है। तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियाँ मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए।
0: सर बिल्कुल।
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
0: मैं होस्ट, क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पर जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
0: बस सर सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that conversation and much more is up on our website. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
1: विषय है ये, दुनिया का सामने एक लाफिंग स्टॉक बन गया। आज तक कभी सुना जी, इंडिया ब्लॉक की सारे आला नेता एक जगह बैठकर प्रेस को एड्रेस किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। पश्चिम बंगाल में खुलेआम ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो कौन सा इंडिया ब्लॉक, कहां का इंडिया ब्लॉक? टू वैंक्विश्ड कैनॉट मेक एनी विक्टर। आने वाला 20 साल में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सशक्त विपक्ष का जरूरत है। दुर्भाग्य है कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र की जननी, उसमें कोई विपक्ष नहीं मिल रहा है।
2: कांग्रेस 100 एमपी से ज्यादा की पार्टी है, और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी। उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
3: And TMC is indeed fighting for its political survival after the debacle in the recently concluded polls. There are cracks in TMC MP ranks. Parliament after assembly, that's the big question. There are reports of growing disquiet among the TMC member of parliament. Several MPs are said to be in touch with the rebel camp. MPs are upset over party's internal power equations. There is also this discontent which is linked to Abhishek Banerjee's rise within the TMC. Many call it an instance of nepotism. The old guard has said to be pushing for a bigger role, but they have never quite gotten a share of what they were demanding. The Delhi unit emerges as a new power center as Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee try to negotiate with this new power center. The rebel camp claims to have the support beyond the assembly. They're saying not just 60 MLAs. We don't stop there. We're also talking about the member of parliament. There are fears of revolt which is spreading from Kolkata to Delhi. And what will happen in the next few days is a wait and watch. We have the guest joining us on the broadcast. Will the TMC be able to successfully fight for its survival? What kind of role will TMC really play in the India bloc? Will Mamata Banerjee and her political ambition to come to the center and bring the parties together against the BJP find some kind of political momentum, or will it be a no-show? Those are the key questions that we ask our guest tonight. Joining us on the broadcast is Mr. R.P. Singh of the BJP. We also have Tauseef Ahmed Khan, who's a political analyst, Ms. Gargi Nandi Roy, who's a political analyst, and Mahua Chatterjee, who's a political analyst, joining us on the broadcast. Good evening, all of you. Thank you so much for joining us. Mr. R.P. Singh, I would like to begin with you. And addressing the elephant in the room here, the Congress party has made an allegation that BJP is not allowing smaller regional parties to survive. NCP, Shiv Sena, and now the Trinamool Congress. Response, sir, to that allegation, please.
4: Well, I heard Awar Abdullah saying the same for the Congress party. Hmm. And I heard DMK saying something like that, that they have stabbed us in the back. The Congress has stabbed us in the back. So, who is not able to carry the alliance together, is one can see through. But let's see how it's happening. Right from Kashmir, I just spoke about the National Conference, Omar Abdullah. Let's talk about Punjab. Aam Aadmi Party is already against the Congress party, and then Samajwadi Party supports Aam Aadmi Party. Between Congress and Aam Aadmi Party, they come and support Aam Aadmi Party in Delhi. Going to झारखंड झारखंड

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh claim. They have said, and I'm quoting what the trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen into what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores of crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... Right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी।
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात, जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही। तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है, मंदिर वाले उसका जवाब तो उनको देंगे।
0: हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को, जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
5: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है।
0: टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी न किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
6: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal Minister Arup Biswas. Remember, over this messy mess incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionate, officers of Bidhanagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot and a certain time from the investigating team, citing that he is not keeping well, which is why that he was needed time, but he did not cite any medical certificate with regard to that. Now it is. It would be interesting to see what happened tomorrow, if he really appears before the probing team. Pressures are only mounting on Arup Biswas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
0: All right, Ritik. Thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll, of course, keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek

0: party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hands. And she is going to Delhi to again, you know, create commotion.
1: Right now, I don't want to give any kind of reaction. Mamata Banerjee removed from the power by the people. And the people of West Bengal now know what kind of politics she had done in the past 15 years. So everybody is saying this kind of politics we never witnessed in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
2: यार पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है। और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखें। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
3: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this block meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another block party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
4: Tomorrow and I, one of us will go.
5: Okay, so National Conference is going to represent?
4: Obviously, we are part of that. We'll be there.
6: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है, भी मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस 100 MP से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
7: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, दे वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इश्यू ऑफ स्टूडेंट्स, not many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
8: After a long time, a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
9: देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका
10: मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस

0: तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
1: वेयर इज इंडिया अलायंस? द सीपीएम पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बीबी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। Congress has been alleging that CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा
7: का राजा आग और मसाला।
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
9: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Thuvendu Adhikari leading at this moment. Five states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
10: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
9: We've got some breaking news just coming in.
11: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchan, what's going on here?
10: Khela ho big.
12: Vijay is finishing off every existing political force.
11: This holds, Pradeep Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
13: Janta ko badhai de raha hoon.
11: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ। था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
2: सर बिल्कुल
1: तो आप होस्ट करोगे क्या
2: मैं होस्ट क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा
1: वैभव मैं दिल से बोलता

0: तुमको, क्योंकि जब तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
1: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said.

0: and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP?
1: Actually, yes. From yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust, and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores of crores rupees are missing from Ram Mandir Trust, and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on, and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on. And Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing. And as per media reports, it is around 7 crores or 8 crore. But there is no clarification yet. But the claim by the Samajwadi
0: Party... All right, Ranveer, as you can see all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar. Thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an acquisition on social media, there must be solid grounds for that.
2: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी.
2: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है. वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी.
2: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी.
2: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है. क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है, उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही. तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है. मंदिर वाले उसका जवाब तो उनको देंगे.
0: राजी, आप ठीक कह रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को, जनमानस को देना चाहिए.
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है. मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है. किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है.
2: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे. वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना. वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो बताएं आके. लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं. तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है.
0: राजी, टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी ना किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे. बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
3: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this messy mess incident which happened at Kolkata's prestigious URT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionate, officers of Bidhanagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 aim.

0: pressure is only mounting on Arup Bishwas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
1: All right, Ritik, thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll, of course, keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
2: How does it matter, you know, when the party is in shambles? TMC party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand. And she's going to Delhi to again, you know, create commotion.
3: Right now, I don't want to give any kind of reaction. Mamata Banerjee removed from the power by the people. And the people of West Bengal now know what kind of politics she had done in the past 15 years. So everybody is saying this kind of politics we never witnessed in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
4: यह पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है, और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखिए। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
1: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who's battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this bloc meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another bloc party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
5: Amar and I, one of us will go.
6: Okay, so National Conference is going to represent?
5: Obviously, we are part of that. We'll be there.
7: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की. वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है. उसके बाद हम बात करेंगे. खुद तो बिहार में देख लो आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है. वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है. भी मंत्री कैसे रहेगा. यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही. तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं.
5: कांग्रेस 100 MP से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए. आज देश का यही तकाजा है. छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी. आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी. उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है. इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा.
8: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे हैं
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ था। वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है अभी बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
2: सर बिल्कुल
1: तो आप होस्ट करोगे क्या
2: मैं होस्ट क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा
1: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ये के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी, जहाँ भी, जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज़ अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिल के फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ था। वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है अभी बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाए फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद अभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
2: सर बिल्कुल
1: तो आप होस्ट करोगे क्या
2: मैं होस्ट क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा
1: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी, जहाँ भी, जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen into what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर इलाका जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes. From yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... Right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he's a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले जवाब तो उनको देंगे
0: ना कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: क्योंकि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
5: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है।
0: टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी न किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
6: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this messy incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionate, officers of Bidhanagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot and,

0: And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
1: How does it matter, you know, when the party is in shambles? TMC party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand. And she is going to Delhi to again, you know, create commotion.
2: Right now, I don't want to give any kind of reaction. Mamata Banerjee removed from the power by the people. And the people of West Bengal now know what kind of politics she had done in the past 15 years. So everybody is saying this kind of politics we never witness in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
3: यार पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है। और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखिए। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
0: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this block meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another block party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
4: Amar and I, one of us will go.
5: Okay, so National Conference is going to represent?
4: Obviously, we are part of that. We'll be there.
6: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे. खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है. वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी. मंत्री कैसे रहेगा? यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं, संजय जी, कि यहाँ तो तानाशाही. तो जरा अपने दामन में देखो, तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं.
7: कांग्रेस 100 MPs से ज़्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए. आज देश का यही तकाजा है. छोटी छोटी पार्टीज़ देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी. आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी. उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है. इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा.
8: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, दे वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इश्यू ऑफ स्टूडेंट्स. ऑल मच नॉट मेनी इश्यूज आर डिस्कसिंग हैज टू डिस्कस इन

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ। था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है

0: अनरियल। मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से वो लोग प्यार करते और सपोर्ट करते।
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है, ठीक है। तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद अभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर, अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियाँ मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए।
0: सर बिल्कुल,
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
0: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
1: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
0: बस सर सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... Right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he's a responsible, respected leader. And when he has made such an acquisition on social media, there must be solid grounds for that.
5: Mujhe lagta hai ki,

0: उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
1: जी,
0: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
1: जी।
0: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
1: जी
0: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेंपल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही। तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है, मंदिर वाले
1: अनुराग
0: उसका
1: जी आप
0: जवाब तो
1: ठीक
0: उनको
1: कह रहे
0: देंगे ना।
1: हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को, जनमानस को देना चाहिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: राम मंदिर
0: बिल्कुल
1: हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटैंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
0: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है, बताना
1: अनुराग
0: तो
1: जी,
0: उन्हें चाहिए ना,
1: टेम्पल
0: वो
1: ट्रस्ट की
0: चुप्पी
1: तरफ
0: क्यों।
1: से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी ना किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया,
0: हाँ
1: धन्यवाद,
0: तो
1: धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
2: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this messy incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionate, officers of Bidhanagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot a certain time from the investigating team, citing that he is not keeping well, which is why that he was needed time, but he did not cite any medical certificate with regard to that. Now it is. It would be interesting to see what happened tomorrow. If he really appears before the probing team, pressures are only mounting on Arup Biswas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
1: All right, Ritik. Thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll of course keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
3: How does it matter, you know, when the party is in shambles? TMC party is in shambles.

0: original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand. And she is going to Delhi to again, you know, create commotion.
1: Right now, I don't want to give any kind of reaction. Mamata Banerjee removed from the power by the people. And the people of West Bengal now know what kind of politics she had done in the past 15 years. So everybody is saying this kind of politics we never witnessed in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
2: यह पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है। और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखिए। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
3: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this block meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another block party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
4: Tomorrow and I, one of us will go.
5: Okay, so National Conference is going to represent?
4: Obviously, we are part of that. We'll be there.
6: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे. खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है. वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है. भी मंत्री कैसे रहेगा. यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं, संजय जी, कि यहाँ तो तानाशाही. तो जरा अपने दामन में देखो, तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं.
4: कांग्रेस 100 MP से ज़्यादा की पार्टी है, और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए. आज देश का यही तकाजा है. छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी. आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी. उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है. इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा.
7: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, द वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इशू ऑफ स्टूडेंट्स. All much, lot many issues are discussing, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
8: After a long time, a formal meeting of India Bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
9: देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है. उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है. कल भी हमने

0: देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
1: Where is India alliance? The CPM party has already this All India General Secretary Mr. BB has already written a letter to Congress. Congress has been alleging that CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India alliance meet when you think you have put this allegation on us?
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज़ अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे हैं
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ था। वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए

0: छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
1: सर। बिल्कुल
0: तो आप होस्ट करोगे क्या?
1: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
0: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जब तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
1: बस सर सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained, accounts have been maintained, and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कार्यकर्ताओं पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हुआ सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores of crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crore, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... All right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.

0: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
1: जी,
0: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
1: जी।
0: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
1: जी
0: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेंपल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है, मंदिर वाले
1: अनुराग जी
0: उसका
1: आप
0: जवाब तो
1: ठीक
0: उनको
1: कह रहे
0: देंगे ना।
1: हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को, जनमानस को देना चाहिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: राम मंदिर
0: बिल्कुल
1: हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटैंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
0: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है, बताना
1: अनुराग
0: तो
1: जी,
0: उन्हें चाहिए ना,
1: टेंपल
0: वो
1: ट्रस्ट की
0: टॉपिक
1: तरफ
0: तो।
1: से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी ना किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया,
0: हाँ
1: धन्यवाद,
0: तो
1: धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Hrithik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Hrithik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
2: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this messy incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhan Nagar Police Commissionate, officers of Bidhan Nagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot a certain time from the investigating team, citing that he is not keeping well, which is why that he was needed time, but he did not cite any medical certificate with regard to that. Now it is. It would be interesting to see what happened tomorrow. If he really appears before the probing team, pressures are only mounting on Arup Biswas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
1: All right, Hrithik. Thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll of course keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
3: How does it matter, when the party is in shambles? TMC

0: लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
1: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this bloc meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another bloc party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
2: More and I, one of us will go.
3: Okay, so National Conference is going to represent?
2: Obviously, we are part of that. We'll be there.
4: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
2: कांग्रेस 100 MPs से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
5: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, दे वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इशू ऑफ स्टूडेंट्स, all much lot many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India alliance meeting, certainly in all India alliance meeting is important, this is also important meeting.
6: After a long time a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
7: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
8: वेयर इज इंडिया अलायंस? द CPM पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बीबी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। कांग्रेस हैज बीन अलेजिंग दैट CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज़ अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ था। वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद अभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
2: सर बिल्कुल
1: तो आप होस्ट करोगे क्या
2: मैं होस्ट क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ये के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी, जहाँ भी, जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कार सेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हुआ सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes. From yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores of crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crore, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... All right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar. Thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an acquisition on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात, जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले उसका जवाब तो उनको देंगे।
0: राजी, आप ठीक कह रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को, जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: क्योंकि राम मंदिर
5: बिल्कुल
0: हमारी आस्था का विषय है, मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक

0: वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा कल, साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिएगा।
1: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who's battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this bloc meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another bloc party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
2: Amar and I, one of us will go.
3: Okay, so National Conference is going to represent.
2: Obviously, we're part of that. We'll be there.
4: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
2: कांग्रेस 100 MPs से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज़ देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज़ भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
5: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, दे वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इश्यू ऑफ स्टूडेंट्स, all much lot many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India alliance meeting, certainly in all India alliance meeting is important, this is also important meeting.
6: After a long time a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
7: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
8: वेयर इज इंडिया अलायंस? द CPM पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बीबी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। कांग्रेस हैज बीन अलेजिंग दैट CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव, आप मैनिफेस्टेशन किए, स्टार्ट जब किए, बहुत सारे प्लान बनाते हो. वैभव हमेशा ड्रीम देखता है, फिर एक एक चीज अचीव करता है, फिर खुश होता है. वैभव अगला क्या सोच रहे हैं?
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं, अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का, कंट्री के लिए, किसी के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था. वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म, ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना. और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ.
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले, साथी विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है?
2: सर मैं आपको सच बताऊँ, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था. एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का.
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया. हाँ, था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है.
2: हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था. जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए. जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह. उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में. जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, अभी बहुत आगे जाना है, गेम पर ध्यान देना है, एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है. काफ़ी सर,
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की.
2: सर मैं आपको बता दूँ, उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो. मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया, फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है. मतलब बिहार, जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब अलग ही फील होता है वो. मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में, हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना, नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ, रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से. जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं. मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब. और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल. मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते.
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है. ठीक है, तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर, अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए.
2: सर बिल्कुल.
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
2: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा.
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त. इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ये के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कार्यकर्ताओं पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say fuss or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party. Right, Ranveer, as you miss all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar. Thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an acquisition on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। जो क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले उसका जवाब तो उनको देंगे ना
0: कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि

0: Ahead of this block meeting, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another bloc party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
1: More and I, one of us will go.
2: Okay, so National Conference is going to represent?
1: Obviously, we're part of that. We'll be there.
3: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। या उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस 100 MP से ज़्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज़ देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, BJP नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
5: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, the way in which government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students, lot many issues are discussing, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
6: After a long time, a formal meeting of India Bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
7: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस BJP को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
8: वेयर इज इंडिया अलायंस? द CPM पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर BB हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। कांग्रेस हैज बीन अलेजिंग दैट CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
0: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ था। वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है अभी बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद अभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
2: सर बिल्कुल
1: तो आप होस्ट करोगे क्या
2: मैं होस्ट क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा
1: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी, जहाँ भी, जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
1: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वालों के लिए और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
2: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
3: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes. From yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores of crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
3: Party... As you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
3: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
3: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
3: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात, जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले जवाब तो उनको देंगे
3: ना कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को, जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
3: राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
5: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो बताएं आके लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो

0: with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this block meeting, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another bloc party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
1: Amar and I, one of us will go.
2: Okay, so National Conference is going to represent?
1: Obviously, we're part of that. We'll be there.
3: कहूंगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहां देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। या उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस 100 MPs से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, BJP नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
5: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, the way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students, lot many issues are discussing, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
6: After a long time, a formal meeting of India Bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
7: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस BJP को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
8: वेयर इज इंडिया अलायंस? द CPM पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर BB हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। कांग्रेस हैज बीन अलेजिंग दैट CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
0: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: So, Vaibhav, aap manifestation kiye, start jab kiye, bahut sare plan banate ho. Vaibhav hamesha dream dekhta hai, fir ek ek cheez achieve karta hai. फिर खुश होता है।
2: वो अगला क्या सोच रहे?
3: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं, अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का, कंट्री के लिए, किसी के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूं कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था, वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म, ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है, और क्योंकि इंजॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं लाइफ टाइम इंजॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ।
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले, साथ ही विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है?
3: सर मैं आपको सच बताऊं, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था, एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का।
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया। हाँ, था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है।
3: हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था। जब उन्होंने ऐसे कंधे पर हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे, मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए, जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह, उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में। जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, बहुत आगे जाना है, गेम पे ध्यान देना है, एकदम पांव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है। काफ़ी सर,
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की।
3: सर मैं आपको बता दूँ, उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो। मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाए, फिर भी जिस तरीके से वो लोग, मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब बिहार, जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो, मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब
1: मेरे अपने
3: बिहार में। हाँ, बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना, नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूं, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से, जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग, मतलब। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल, मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते।
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है, ठीक है। तो मैं अभी कभी, मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियाँ मनाने, तो मुझे बिहार में जाना चाहिए।
3: सर बिल्कुल,
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
3: मैं होस्ट के, आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
3: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen into what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर इलाका जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes. From yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores of crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... All right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले
0: अनुराग जी, आप ठीक कह रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटैंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
5: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है।
0: राजी, टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी ना किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Hrithik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Hrithik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
6: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this messy mess incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionerate, officers of Bidhanagar Police Commissionerate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot and a certain sign from the investigating team, citing that he is not keeping well, which is why that he was needed time, but he did not cite any medical certificate with regard to that. Now it is it would be interesting to see what happened tomorrow, if he really appears before the probing team. Pressures are only mounting on Arup Biswas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
0: All right, Hrithik, thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll of course keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
7: How does it matter, when the party is in shambles? TMC party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand. And she is going to Delhi to again, create commotion.
8: Right now, I don't want to give any kind of reaction. Mamata Banerjee removed from the power by the people. And the people of West Bengal now know what kind of politics she had done in the past 15 years. So everybody is saying This kind of politics we never witness in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
9: यार पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है। और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखिए। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
0: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this bloc meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee.

0: Tomorrow and I, one of us will go.
1: Okay, so National Conference is going to represent?
0: Obviously, we are part of that. We'll be there.
2: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस 100 MP से ज्यादा की पार्टी है, और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, BJP नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
3: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, the way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students, lot many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
4: After a long time, a formal meeting of India Bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
5: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस BJP को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
6: वेयर इज इंडिया अलायंस? द CPM पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर BB हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। Congress has been alleging that CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
7: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज़ अचीव करता है फिर खुश होता है
2: वैभव अगला क्या सोच रहे
3: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
3: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ था। वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
3: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है अभी बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
3: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब अनरियल है वो मतलब मैंने कुछ गलत भी करा मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे मतलब जितना बोलूँ उतना कम है मतलब बिहार जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया अब सेफ हूँ मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं और मतलब
1: मेरे अपने
3: बिहार में हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ पैदल निकलूँ रात में शाम में दिन में जब भी घूमूँ क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानोगे ना उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़ अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है वो अनरियल मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है ठीक है तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे टूर अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
3: सर बिल्कुल
1: तो
3: सर,
1: आप होस्ट करोगे क्या
3: मैं होस्ट क्या आप जो बोले वो सब हो जाएगा
1: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको क्योंकि जब तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
3: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कार्यकर्ताओं पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही

0: reactions.
1: Amar and I, one of us will go.
2: Okay, so National Conference is going to represent?
1: Obviously, we're part of that. We'll be there.
3: कहूंगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहां देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है भी, मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस 100 MPs से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, BJP नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
5: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, the way in which government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students, lot many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
6: After a long time, a formal meeting of India Bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
0: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस BJP को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
7: वेयर इज इंडिया अलायंस? द CPM पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर BB हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। कांग्रेस हैज बीन अलेजिंग दैट CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
8: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए, स्टार्ट जब किए, बहुत सारे प्लान बनाते हो. वैभव हमेशा ड्रीम देखता है, फिर एक एक चीज़ अचीव करता है, फिर खुश होता है. वैभव अगला क्या सोच रहे हैं?
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं, अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का, कंट्री के लिए, किसी के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था. वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म, ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना. और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ.
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले, साथ ही विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है?
2: सर मैं आपको सच बताऊँ, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था. एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का.
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया. हाँ, था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है.
2: हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था. जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए. जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह. उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में. जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, अभी बहुत आगे जाना है, गेम पर ध्यान देना है, एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है. काफ़ी

0: आपका जो होम स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की।
1: सर मैं आपको बता दूं, उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो। मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाए, फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब बिहार, जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब वो अलग ही फील होता है। वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और मतलब
0: मेरे अपने
1: बिहार में, हाँ बिहार में रहना, मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना, नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से, जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग, मतलब। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल। मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते।
0: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है, ठीक है। तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने, तो मुझे बिहार में जाना चाहिए।
1: सर बिल्कुल।
0: तो आप होस्ट करोगे क्या?
1: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
0: वैभव मैं दिल से बोलता था तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
1: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh claim. They have said, and I'm quoting what the trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen into what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं,

0: उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है, नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
1: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हुआ सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
2: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
3: Actually, yes. From yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust, and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores rupees are missing from Ram Mandir Trust, and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on, and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crore, but there is no clarification yet. But the claim by the Samajwadi
2: Party. Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar. Thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the...

0: मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
1: जी,
0: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
1: जी।
0: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
1: जी,
0: तो उनको ये बात का इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही। तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है, मंदिर वाले
1: अनुराग जी
0: जवाब
1: आप
0: तो
1: ठीक
0: उनको
1: कह रहे
0: देंगे
1: हैं कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को जनमानस को देना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर
0: बिल्कुल
1: हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटैंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
0: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है,
1: अनुराग जी
0: तो
1: टेम्पल ट्रस्ट की तरफ
0: चुपिक्यों?
1: से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी न किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
2: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this messy mess incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionate, officers of Bidhanagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot and certain time from the investigating team, citing that he is not keeping well, which is why that he was needed time, but he did not cite any medical certificate with regard to that. Now it is it would be interesting to see what happened tomorrow, if he really appears before the probing team. Pressures are only mounting on Arup Biswas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
1: All right, Ritik, thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll of course keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
3: How does it matter, when the party is in shambles? TMC party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand.

0: प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं संजय जी कि यहाँ तो तानाशाही, तो जरा अपने दामन में देखो तुम्हारे मंत्री क्या बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस 100 एमपी से ज़्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है, छोटी छोटी पार्टीज़ देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
2: Certainly after the meeting we will tell the agenda. We are discussing about the current political situation in the country. The way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes and the issue of students. Lot many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
3: After a long time, a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
4: देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग? देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
5: वेयर इज इंडिया अलायंस? द सीपीएम पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बीबी has already written a letter to Congress. Congress has been alleging that CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
6: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव आप मैनिफेस्टेशन किए स्टार्ट जब किए बहुत सारे प्लान बनाते हो वैभव हमेशा ड्रीम देखता है फिर एक एक चीज़ अचीव करता है फिर खुश होता है वैभव अगला क्या सोच रहे
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं जब जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का कंट्री के लिए किसी के लिए किसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी टीम के लिए इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ अच्छे से खेलूँ
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले साथ ही विराट भैया को मिले जय भाई को मिले तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है
2: सर मैं आपको सच बताऊँ जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था विराट भैया का
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया हाँ वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है
2: हाँ मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए जिस तरीके से उन्होंने बात किया लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से तो बहुत कुछ समझाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है अभी बहुत आगे जाना है गेम पर ध्यान देना है एकदम पाँव जमीन पर रख के बस अपने काम पर फोकस करना है काफ़ी सर
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनका क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की
2: सर मैं आपको बता दूँ उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग

0: सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो। मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाए, फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब बिहार, जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब वो अलग ही फील होता है वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और मतलब
1: मेरे अपने
0: बिहार में, हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना, नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से, जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग, मतलब। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल। मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से वो लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं।
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है, ठीक है। तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने, तो मुझे बिहार में जाना चाहिए
0: सर, बिल्कुल।
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
0: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा।
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ए के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
0: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
2: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen into what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर इलाका जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... Right, Ranveer, as you give us all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he's a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ से जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले जवाब तो उनको देंगे
0: ना कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: क्योंकि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
5: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है।
0: टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी न किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
6: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal minister Arup Biswas. Remember, over this...

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव, आप मैनिफेस्टेशन किए, स्टार्ट जब किए, बहुत सारे प्लान बनाते हो. वैभव हमेशा ड्रीम देखता है, फिर एक एक चीज अचीव करता है, फिर खुश होता है. वैभव अगला क्या सोच रहे?
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं, अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का, कंट्री के लिए, किसी के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था. वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म, ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना. और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ.
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले, साथ ही विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है?
2: सर मैं आपको सच बताऊँ, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था. एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का.
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया. हाँ, था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है.
2: हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था. जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे, मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए. जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह. उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में. जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, अभी बहुत आगे जाना है, गेम पर ध्यान देना है, एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है. काफ़ी सर,
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की.
2: सर मैं आपको बता दूँ, उनके लिए बोल, मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो. मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाए, फिर भी जिस तरीके से वो लोग, मतलब बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है. मतलब बिहार, जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब वो अलग ही फील होता है. वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं. और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में, हाँ बिहार में रहना, मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना, नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ, रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से, जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं. मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग, मतलब. और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल. मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते.
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है. ठीक है, तो मैं अभी कभी, मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने, तो मुझे बिहार में जाना चाहिए.
2: सर बिल्कुल.
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
2: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा.
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त. इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ये के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. That is a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen into what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कारसेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust. So, since yesterday, no one was saying a single word, but there was unverified reports that some funds are missing from the Ram Mandir Trust and it is in crores. Mm-hmm. And Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief today, posted on social media claiming that crores rupees are missing from Ram Mandir Trust and Ram Mandir Trust should reply. And in evening, Ram Temple Trust clarified that the audit process is going on and that's why there are some kind of, you can say, fuss, or you can say some kind of gossip are going on over this missing fund from the donation received by the Ram Mandir Trust in Ram Temple. So now the war of word between Samajwadi Party and BJP and the Hinduwadi outfits, this is going on, and Samajwadi Party claims that there are some funds which are missing, and as per media reports, it is around 7 crores or 8 crores, but there is no clarification yet, but the claim by the Samajwadi
0: Party... All right, Ranveer, as you all those details, Anurag Bhadoria from the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Anurag ji, namaskar, thank you so much for joining us on the broadcast today. What is the authenticity and what is the substance of the claim which has been made by Akhilesh Yadav? I presume he is a responsible, respected leader. And when he has made such an accusation on social media, there must be solid grounds for that.
5: मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो ये मंदिर को बताना चाहिए कि वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो उसको देखते हैं
0: जी,
5: उनको उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या सही है। वो ये तो जवाब तो मंदिर वाले देंगे ना, मंदिर के जो हेड करते हैं, मंदिर को जो देखते हैं
0: जी।
5: तो जब वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर ने भी ये बात कही
0: जी,
5: तो उनको ये बात का, इस बात को क्लेरिफिकेशन तो टेम्पल वाले देंगे ना, मंदिर वाले देंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह की बात वहाँ हो रही है उसी बात जिस तरह की वहाँ लोकल लीडर ने बात बताई तो वो बात उन्होंने कही, तो अब ये मंदिर वाले बताएं कि सही क्या है। मंदिर वाले जवाब तो उनको देंगे
0: ना कि मंदिर के ट्रस्ट को किसी ना किसी तरीके का स्पष्टीकरण जो है वो लोगों को जनमानस को देना चाहिए।
5: बिल्कुल,
0: क्योंकि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अगर इस तरह का आरोप हम एक सार्वजनिक मंच पर लगाते हैं तो किसी ना किसी तरीके का साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई सब्सटेंशियल क्लेम, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है, किस बिना पर, किस बेसिस पर इस तरह का आरोप लगाया गया है, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
5: नहीं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस तरह की बात जब बोली जाती है तो वो मंदिर की तरफ से जो ट्रस्टी है, जो मंदिर को देखते हैं, वो ये बताएंगे, वो क्यों नहीं, वो क्लेरिफिकेशन तो उनको देना है ना, वो क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो बताएं आके। लेकिन वो उन्होंने अभी तक टेम्पल की तरफ से तो कोई बात आई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बताना तो उनको है।
0: टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि किसी न किसी तरीके का ऑडिट प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो इसके डिटेल्स भी बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया फ्रॉम द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Shifting our focus to some more latest news coming in, former West Bengal Sports Minister Arup Biswas has been summoned by the police in connection with a case related to chaos at the Lionel Messi event at Salt Lake Stadium last year after he failed to appear before the investigators by Friday. The TMC leader, who had earlier cited health issues and stated that he was not in a position to attend the summons, had been asked to appear before the investigators on the 8th of June. And I'm quoting, "We have asked Arup Biswas to appear before our officers on 8th of June. A notice has been served to him today," unquote. This is an officer of Bidhan Nagar Dakshin Police Station, and that's what he has said. My colleague Ritik Mondal joining us on the phone line, giving us more details on the story. Ritik, just a background from you about this summoning that has happened over the Messi event.
6: Well, what we do understand, this is the second summon which has been served to the former Bengal Minister Arup Biswas. Remember, over this messy mess incident which happened at Kolkata's prestigious UORT Krirangan, now the Bidhanagar Police Commissionate, officers of Bidhanagar Police Commissionate wants to grill Arup Biswas, and today is the second summon has been served before, at the doorstep of a former minister. In that particular notice, he has given 11 a.m. time till tomorrow to appear before the probing team. Now, before that, the Arup Biswas shot and certain sign from the investigating team, citing that he is not keeping well, which is why that he was needed time, but he did not cite any medical certificate with regard to that. Now it is it would be interesting to see what happened tomorrow, if he really appears before the probing team. Pressure is only mounting on Arup Biswas following such summons by the probing team once again at his doorstep. Back to you.
0: All right, Ritik, thank you so much for putting all of that into perspective for us. We'll of course keep coming back to you for more. And TMC is facing a deepening crisis as rebellion spills from West Bengal Assembly and now into Parliament. Rebel MPs are likely to approach Lok Sabha Speaker Om Birla with a letter seeking recognition of a separate grouping and rejecting Abhishek Banerjee as their parliamentary leader. Now, this signals a potential implosion that could further weaken the party nationally. In an attempt to quell the rebellion, TMC's General Secretary Abhishek Banerjee landed in Delhi and he's likely to meet the TMC MPs. The speculation is on, and MPs have also fueled after Ritabrata Banerjee, in conversation with NDTV, said that TMC MPs who are already in Delhi are set to meet the Lok Sabha Speaker on Monday.
7: How does it matter, when the party is in shambles? TMC party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand. And she's going to Delhi to again, create commotion.
8: Right now, I don't want to give any kind of reaction. Mamata Banerjee removed from the power by the people. And the people of West Bengal now know what kind of politics she had done in the past 15 years. So everybody is saying this kind of politics we never witnessed in Bengal or West Bengal. They should be dumped in dustbin.
9: यह पार्टी ममता बनर्जी ने खड़ी की, अपने खून पसीने से की, अपने संघर्ष से की, जेल गई, उनका माथा भंगचूर हुआ, उनकी हड्डियां टूटी, मार खाया और उन्होंने खड़ा किया है। और घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखें। जो लोग ये एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरा हुआ है, वो उसमें वो हवा है नहीं, वो पंचर हो जाएगा, कल साफ पता लग जाएगा, आप कल देखिए।
0: And amid buzz over a divided opposition INDIA bloc, the opposition alliance is set to hold a crucial meeting in the national capital on the 8th of June. According to Congress, 23 political parties have confirmed their participation, while TMC has affirmed that INDIA bloc is united and meeting is done with a common purpose and a clear intent. Mamata Banerjee, who is battling the biggest existential crisis of her political career, has arrived in the national capital to attend the meeting along with her nephew Abhishek Banerjee. Ahead of this block meeting, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal met Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. Even though AAP has distanced itself from the coalition and taken a sharp dig at the Congress party and said that BJP and Congress are hand in gloves to weaken the smaller parties. Another block party, which is DMK, has claimed that it will boycott the meeting as the party is not a part of the alliance anymore after Congress betrayal in Tamil Nadu. Congress leader Rashid Alvi has stated that the smaller parties should merge with the Congress as BJP will not allow them to survive. Reactions.
10: Tomorrow and I, one of us will go.
11: Okay, so National Conference is going to represent?
10: Obviously, we are part of that. We'll be there.
12: कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। खुद तो बिहार में देख लो, आज कुशवाहा साहब कितना नाराज है, वो आपके गठबंधन के सदस्य ना, उनका बेटे को MLC बनाया और टिकट नहीं दिया है, भी मंत्री कैसे रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, निषाद जी कल बोल गए हैं, संजय जी

0: करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी, उनके पास एजेंसीज भी हैं, उनके पास काला धन भी है। इसलिए इन पार्टीज़ को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा।
1: सर्टेनली आफ्टर द मीटिंग वी विल टेल द एजेंडा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, दे वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बुलडोजिंग एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स एंड द इश्यू ऑफ स्टूडेंट्स, not many issues are discussing in, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting.
2: After a long time, a formal meeting of India bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
3: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस।
4: वेयर इज इंडिया अलायंस? द सीपीएम पार्टी हैज ऑलरेडी द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बीबी हैज ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू कांग्रेस। Congress has been alleging that CPM and BJP are together under the table. So Mr. BB's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us?
5: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: political situation in the country, the way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students, not many issues are discussing, has to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also an important meeting.
1: After a long time, a formal meeting of India Bloc is taking place. I do not know who are all the leaders going to be present there, which are the parties going to attend the meeting. I do not know all the informations. Even agenda is not very clear. Every party has certain issues to raise. DMK is not attending that meeting. Left parties openly have said there are issues to be raised. This cannot be taken as cracks.
2: देखिए कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है. उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है. कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए. जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं. आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से. हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस.

0: Welcome back, and after one of the most historic IPL campaigns, the one name on everybody's mind is teen sensation Vaibhav Suryavanshi and his rise to the pinnacle of T20 cricket. Now, with an India call-up under his belt, his rise is nothing short of historic. Here's a special conversation with the boy wonder himself. Listen in.
1: तो वैभव, आप मैनिफेस्टेशन किए, स्टार्ट जब किए, बहुत सारे प्लान बनाते हो. वैभव हमेशा ड्रीम देखता है, फिर एक एक चीज़ अचीव करता है, फिर खुश होता है. वैभव अगला क्या सोच रहे हैं?
2: मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब अब क्रिकेट खेलूं, अगले 20 साल तक जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे खेलने का, कंट्री के लिए, किसी के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूँ कि जब लोग देखे मैचेस के बारे में सोचे तो लोग ऐसा बोले कि एक प्लेयर जो जब भी खेलता था वो अकेले ही मैच ख़त्म कर देता था. वो डोमिनेंस दिखना चाहिए वो, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेला और खेल ख़त्म, ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना. और क्योंकि इन्जॉय करने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मैं लाइफ टाइम इन्जॉय करूँ, अच्छे से खेलूँ.
1: आज बहुत सारे लोगों को मिले, साथ ही विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है?
2: सर मैं आपको सच बताऊँ, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था. एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का.
1: मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया. हाँ, था वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है.
2: हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था. जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए. जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह. उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में. जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, अभी बहुत आगे जाना है, गेम पर ध्यान देना है, एकदम पाँव जमीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है. काफ़ी सर,
1: आपका जो होम स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की.
2: सर मैं आपको बता दूँ, उनके लिए बोल मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो. मतलब मैंने कुछ गलत भी करा, मैं कुछ गलत खेला या मैंने रन नहीं बनाया, फिर भी जिस तरीके से वो लोग मतलब बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे जो मेरे बारे में लिखते हैं पॉजिटिव, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है. मतलब बिहार, जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, जब मैं ऐसा निकलता हूँ पटना से घर के लिए, तो मतलब वो अलग ही फील होता है. वो मतलब लगता है ऐसे कि घर में आ गया, अब सेफ हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं. और मतलब
1: मेरे अपने
2: बिहार में, हाँ बिहार में रहना मतलब मैं अब थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर निकलना. नहीं तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर समय मैं घूमते ही रहूँ, पैदल निकलूँ, रात में, शाम में, दिन में, जब भी घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग एक अलग अटैचमेंट है हर किसी से. जिसको आप नहीं भी जानोगे ना, उससे भी आप बात करोगे तो लगेगा कि बहुत टाइम से दोस्ती है, कुछ पूछोगे उनसे तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते हैं. मतलब कि मतलब वहाँ हर चीज़, अगर आप कुछ पूछ रहे हो अनजान आदमी से और वो कुछ बता रहा है आपको, तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बताते हैं वो लोग मतलब. और जहाँ तक सपोर्ट की बात है और वहाँ के लोगों की बात है, वो अनरियल. मैंने आपको बोला कि वो कुछ देखते ही नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से लोग प्यार करते और सपोर्ट करते.
1: मेरे पासपोर्ट पे अभी भी लिखा है कि मेरी पैदाइश बिहार की, बॉर्न प्लेस बिहार लिखा है. ठीक है, तो मैं अभी कभी मतलब उसके बाद कभी गया नहीं, तो मैं तेरी बातें सुन के लगता मुझे अगर मेरे को कहीं जाना चाहिए छुट्टियां मनाने तो मुझे बिहार में जाना चाहिए.
2: सर बिल्कुल.
1: तो आप होस्ट करोगे क्या?
2: मैं होस्ट क्या, आप जो बोले वो सब हो जाएगा.
1: वैभव मैं दिल से बोलता हूँ तुमको, क्योंकि जैसे तुम इमोशनल हो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, कि आपने जो क्रिकेट हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त. इंडिया जर्सी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके बारे में दो शब्द, उस फीलिंग के बारे में कि आपको लग, बहुत लोगों ने बोला और आप अभी इंडिया ये के टूर पे जा रहे हैं, बस आखिरी बात।
2: बस सर, सबका तो सपना है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, बट मेरा बस यही फोकस है कि जो भी जहाँ भी जिस स्टेज पे भी मुझे मौका मिले, मैं अपना परफॉर्मेंस करते रहूँ, अपना काम करते रहूँ, बाकी सब कुछ मिलते रहेगा।
0: Well, that special conversation and much more is up on our website, edtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And Akhilesh Yadav faces backlash for the Ram Mandir claim. Akhilesh goes on to say that crores in offering missing from Ram Mandir Temple Trust. The Temple Trust, meanwhile, has hit out over Akhilesh's claim. They have said, and I'm quoting what the Trust has said, that all transactions and the records are maintained. Accounts have been maintained and it's a transparent process. BJP has also hit out over Akhilesh's claim. Akhilesh is anti-Sanatan, insulting Ram Mandir. BJP goes on to say that Akhilesh is going through mental bankruptcy. That's the word coming in. Let's first listen in to what Akhilesh Yadav had to say.
1: अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी सनातन का अपमान करते हैं, उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, कार सेवकों पर गोली चलाया, काशी विश्वनाथ का अपमान किया और अखिलेश जी ने एक रुपए का भी योगदान उनका मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन उनको मंदिर के पैसे की चोरी दिख रही है। हमें लगता है अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और अखिलेश जी को सनातन के अपमान के अलावा कोई काम नहीं है।
2: ये श्रद्धालुओं के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले के लिए, वालों के लिए, और जो लोग अपनी आस्था से कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसलिए ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाहक जो हैं, चाहे अध्यक्ष, चाहे चंपत राय जी, चाहे उनके अध्यक्ष जो हमारे मिश्रा जी हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आगे आके इस पर साफ सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है नहीं है। जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ आना चाहिए, स्वयं संज्ञान कोर्ट ले और इसमें जांच हो, पता लगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
3: हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है, लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामनगर का जो काम हो सब सही चल रहा है, ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं।
0: My colleague Ranveer Singh joining us live from Lucknow. Ranveer, give us a context of what Akhilesh Yadav said and the kind of rebuttal coming in from the Temple Trust and the BJP.
4: Actually, yes, from yesterday, a fuss was going on over missing fund of the donation in Ram Mandir Trust.